पाठ पुस्तक संध्यावादन सिलपूच स्पगल समाधन मुखचूठ बपूकन सारंग त्रैपाल ते हाल बिचारंग अलमाला तिलक लाटंग दोई तोती वस्त्र कपाटंग जय जानस ब्रह्म कर्म सपोकर ने चौकर।

तरसोई ज्यों पावै त्यों राख मेरे साहिब, मैं तुझ बिन अवर ना कोई, मैं ताण दी बाण तू है मेरे स्वामी।

शहरातो अवराहा ना मनियार ना चूड़ियां ना सेवंगड़ियां जो सह कंठ ना लगियां जलन से बाहड़ियां सब सहियां सौ रावण गईयां

क्योंकि तेरा सुभाग है दीन दयाल, तेरा सुभाग है पतित पावन, तेरा सुभाग है उदार चित वाला, तेरा सुभाग है कृपालु। ते जे ए सुभाग दे मालक होण दे बावजूद भी तू साडी अर्ज ना सुने, फिर साडी पुकार सुनेगा भी केड़ा। इस करके जा तू ता मैं माण किया, मैं इसलिए माण कीता क्योंकि तू है जिदे अगे मैं अर्ज गुजारनी है, तू है जिदे अगे मैं अरदास करनी है, तू है जिदे अगे मैं पुकार करनी। जे तू ना होवे फिर मैनू माण भी कोई नहीं, मैनू भरोसा भी कोई नहीं। भरोसा करिए भी की दे, अकाल पुरख है जेड़ा सादी साडी वेदन सुन के साडा दुख कटद। संसार वह है जिहड़ा साडी वेदन साडे दुख नूं सुन के तमाशा बनाउंदा। रब कदे तमाशा नहीं जे बनाउंदा, रब हमेशा वेदन सुनदा है, रब अरजोई सुनदा है, अरजोई सुन के वेदन सुन के वह साडे दुख कटदा है। जगत साडे दुख कटदा नहीं, जगत साडे दुखां दा तमाशा बनाउंदा है। इसलिए जा तू ता मैं माण किया, जे तू है इस करके मालका मैं माण कीता। तुद बिन केहा मेरा माणो, तेरे तो बिना मेरा मान किवें, मैं किहदे उत्ते भरोसा करां, किहदे उत्ते मेरा विश्वास हो सकदा

पूजले कति छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर।

ठाकुर गाए आत्म रंग शरणी पावन नाम त्यावन सहज समावन संग सूरा सो पहचानिए जोलरे दीन के हित बुरजा पुरजा कट मरे कबो नशा खेत जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तेरी जय सिर दी जय कान ना की जय मैं मूर्ख की केतक बात है कोट परादी तरियारे गुरु नानक जिने सुनिया पेखिया से फिर गुर भास ना परियारे ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जान।

तदबल जइए तेरा अंतरा पर ब्रया राग असव महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सदगुरु प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब ते आवहें सब ते आवहें तुझ जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जीहां का दातारा हर ते आव संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा।

वारा नमस्कार है ताई हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैन जक्षण उपजायो आद्यंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिवकन को शिव गुण सुख दियो शत्रण को पलमो बध कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चिंटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्टि कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन्ने कट कट के पढ़ पढ़ की जन्ने जब युद्ध करख करा करतारा प्रजा तरत तव देहे अपारा जब आ करख कर तुह कबहूँ तुम मैं मिलत देहे धर सबहूँ जीते बदन सृष्ट सब थारे आब अपनी बूझ उचारे तुम साही तेरह तिनरालम जानत बेद बेद अर आलम।

को कहत सदाशिव रंकार का चीनत न भव आप अपनी बुध है जेती बरनद भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहीं पूपा अंड जे रसे तज कीनी उत्पज खान बहुर रच दीनी कहों फूल राजा हवे बैठा कहों समड भय शंकर अकठा सगरी सृष्टि दुखाए अचंप आजुगा स्वरूप स्वयंप अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बारे सिख संघरो दुष्ट जिदे उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रण गाता जे अस्तु तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहाय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को इक बार ते है ताके काल निकट न है रक्षा हुए ताहि सब कल्ला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्कल्ला।

अन्यो राम रहीम पुराण कुरा अनेक कहे मत एक ना मन्यो सिमृत शास्त्र वेद स्वभय बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो।

राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद अनंत भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता वाया सह सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइया शब्दो तंगावो हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मिसारना अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला सिमरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा करता तेरा सब किच है जिस देह सो पावे सदा सिवत सलाह तेरी नाम मानव सावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा धारो साच नाम है आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जैना इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटों जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा धारो वाजे पंश तिद कर सुभागे कर सुभागे शब्द बाजे कला जित कर धारिया पंच दो तुद वास कीते काल कंड कमारिया का

तित कर अनुहद भाजी आनंद सुनो बड़े भागी हो। सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी।

तेरा कीता जतो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पया मेहरा मत होई सत

नी कटपितर देख मुरारी जिया जन्म मरण को एह जग बपड़ो इन दूजे भगत वसारी जिया सतगुर मिले ता गुरमत पाई साकत बाजी हारी जियो सतगुर बंधन तोड़ नारे बहुड़ न गर्भ मजारी जियो नानक ज्ञान रतन परगसिया

0: खेत गोदई हटाए। कोई गां खेत विच चर रही सी ते कोई रस्ते चों लंघिया तुरिया जांदा, उन्हें देखिया भी ये ते फसल खराब कर देगी, उन्हें उनू फिर गां नू हटाउणा कीता।
1: दावेदार खेत को होए ना,
0: हुण उन्हें हटाउणा कीता इहदी, एक गां जिहड़ी है खेत खराब ना करे फसल। ते इहदा मतलब ये थोड़ी भी उस खेत का मालिक है, समझियो। कोई रस्ते विच तुरिया जांदा है, किसी दी खेत विच गां जिहड़ी है वह फसल खा रही है, उन्हू आया भी फसल खराब ना हो जाए, ते उन्हें उन्हू हटा दिता। ते हटाउण नाल वह खेत का मालिक थोड़ी बन गया। सतगुरु महाराज इस तरह समझाउंदे हन,
1: एह क्या बात लखत है कोई ना,
0: इसलिए ये जिहड़ा तू साडे अगे लिया के भेटा धरी है ना, इहदे ते साडा हक नहीं है।
1: जे मुरीद देहो भेट सो ताहू,
0: जिहदा तू मुरीद है उन्हू जाके दे, जिन्हू तू अपना पीर मानदा है। वह भाई मंझ जी वाली साखी तुसीं सुनी होई है ना, सिखी उत्ते सिखी नहीं टिकनी। तुसी जाओ मड़ियां मसाणा ते, ते जाके आके कहो गुरु महाराज मेरे ते किरपा कर दिओ। महाराज मैं कहिंदे मैं किवें करां, तू ते मड़ियां ते मसाणा तो किरपा लैंदा पिआ, मैं तेरे ते किरपा किदां करां। तू ते देहधारियां कोल किरपा लै रिहा, तू उहदे कोल जा जिथे तैनू विश्वास है, फिर मैं तैनू किरपा किवें तेरे ते करां। जिमें भाई मंझ जी ने समझाया, बस उस तरह महाराज जी कहें तेरा पीर ते होर है, मुरीद तू किसे होर दें, इसलिए जिदा तू मुरीद है उनू जाके ये भेट देना कर।
1: गुर के राह न मारत काहू,
0: गुरु महाराज किसे दा हक नहीं रख दे। तू जिदा मुरीद है उस पीर नू जाके ये भेट देनी कर, असी किसे दा हक नहीं रखना है।
1: कहवण जारा सुन हो गोसाई,
0: हुण कोई होर हुंदा उन्हें ते खुश हो जाना सी भी लिया, भी तू जिदा मर्जी मुरीद होवें पर तू इत्थे भेटा लैके आया, हुण तैनूं जान कोई नहीं देना। उन्हें कहना भी धन भी जिहड़ा वह उत्थे रख लेना सी, पर नहीं, सतगुरु महाराज उन्हूं मत देना चाहुंदे आ, उन्हूं सिख्या देना चाहुंदे आ। साहब जी कहिंदे जिदा तू मरीद है जिहड़ा तेरा पीर है उन्हूं जाके दे भाई, साडी ये भेटा साडी नहीं है। जदों इस तरह महाराज ने आखना कीता,
1: मैं सो मरीदी पिछल सुनाई,
0: हाथ जोड़ के पता की कहिंदा, कहिंदा महाराज मैं तो मुरीद सी हुण नहीं हाँ, पिछल सुनाई वो तो मैं पिछला समा सुनाया, हुण पिछोकड़ आपां देखांगे ते बहुत सानू ऐसे प्राणी मिल जाणगे जिहड़े कदे किते तुरे हुंदे सी, कदे किते कदे किते, अज उह पूरन गुरसिख ने। कई ऐसे मिलदे आ, उह कहिंदे असीं ते कदे इन्हां धागे तवीतां तों बिना नगां तों बिना रहिंदे ही नहीं सां, साडा ते भरोसा ही इत्थे सी, पर हुण सानू इन्हां ते नहीं, हुण सानू परमेश्वर ते भरोसा है। वह कहन लगे महाराज तुसी मेरी बेनती दोबारा सुनो, मैं मुरीद सी पिछल सुनाई, मैं पिछली वार्ता जिहड़ी है वह सुनाउणा कीती है।
1: सुखी गुरु घर ते जब पाई,
0: मैं जदों इस घर की वडियाई सुनी है, महाराज कोई जबरदस्ती नहीं कहिंदे तू इत्थे दा मुरीद बन, तू इत्थे दा सिख बन, तू अमृत की दात लै, कोई धक्का कोई जबरदस्ती नहीं है। इत्थे इत्थे महाराज कहिंदे पहला आ के देख, देख के जदों तेरे अंदर भावना बने ते तू सिखी दी दात लै लै। पर इत्थे कोई ये नहीं भी गर्दन ते तलवार रखी जांदी है भी तू सिख बनना ही, पहला आ के तू पहला समझ भी सिखी है की, पहला गुरु दी सिख्या लै के उन्हूं समझना कर, जदों समझ आ गई सिख तू आपे ही बन जाएगा, फिर तैनू कहण कहाउण दी लोड़ ही नहीं पैनी। असी समझ नहीं पा रहे हैं, जदों समझ आ गई असी तो आप दात मंगांगे वाहिगुरु जी अगों। सतगुरु महाराज मैनू नहीं सी पता, पर जिस तरह मैं संगत दे पासों ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਸੰਗਤ ਦੇਖੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਦੇਖੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀ ਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਰਜਤਪਨ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ।
1: ਤਬ ਕੋ ਰਾਵਰ ਸਿੱਖ ਗੁਸਾਈ।
0: ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਹੁਣ

ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लीते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोविंद नाम सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए डिठे सब दुख जाए। ठीक बहादुर सिमरै घर नौ निदा बिताए। सब थाई हुई सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई हुई सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी।

राय फलंत ज्योति कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती अनहता शब्द भजंत फेरी रहाओ सहस तब नैन नन नैन है तोहे को सहस मूर्त ननायक तोही सहस पद

वाहे गुरु जी की फतेह। सवैये महल्ले तीजे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई पुरख सिवर साचा जाका एक नाम अचल संसारे जिन भगत

तित नाम लागते तीस त्यावे जति तपीसर मन वस्या सोई नाम सिमर गंगेव पिता मैं चर

तार किरण रव सुरतर साखे उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस पाखे जन्म ता एहो सक्यथ जित नाम हर हृदय निवास सुर नर गण गंधर्व छे।

हरख सोग सम कर सहारे, नाम श्रोमण सर्ब में भगत रहे लिवतार, सोई नाम पदार्थ अमर गुर तुस

0: जे कर तार संजो सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जोग।
1: नाम नावण नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी धन सतगुर सेवियो जिस पसाए गत अगम जानी कुल समूह समुद्रे पायो नाम निवास सक्यथ जन्म कल उच्चरै गुर परस्यो अमर परगास बारिज कर दाहिणे सिद्ध सन मुख मुख जोवै रिद

सुपन एक परतख एक एकस महलीनो तीस एक अर पंज सिद्ध पैंतीस नाखीनो एक हो जे लाख लखो अलख है।

0: निज भगत है देख दर्श पावो मुक्त।
1: गुर अमरदास परसिए पोहम पातिक विनाशे। गुर अमरदास परसिए सिद्ध साधिक आशा सह। गुर अमरदास परसिए ध्यान लहिए पौमुख्य है। गुर अमरदास परसिए अभौ लबे गौ चुक्य है। एक बिन दुगण जो तोर है जा।

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर्व कला भरपूर हाजरा हजूर, राजान राज पनान पान, देवान देव उपमा महान। ऐसे दीन दयाल सतगुरु बेअंत भगतां दी टेक, दसां पातशाहियां दी जागदी जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जीयां दे पावन और पवित्र स्थान, गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जीयां दे अमृत वेले दे दर्शन कर रहे हाँ, अमृत वेले दियां हाजरियां लगवा रहे हाँ। जो सतगुरां ने साडे सभना दी झोली दे विच पावन हुक्म दी दात पाई है, सो पावन हुक्म सूही राग दे अंदर शहीदां दे सरताज, शांती दे पुंज पंजवें पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जीयां दा शब्द है, जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर 743 ਅਤੇ 744 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਦਰੇ ਨਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਵਨ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਬਹਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

सतगुरु जी मृदाता को जो सतगुरु लोग समाया सतगुरु ने सतराज को जवाब दिलाया जिन सच सच बजाया जिन सच सच बजाया।